0: पहले पकड़े सिंह सो जो होते चाकर सात।
1: पहला इस पापी लखपत राय ने की किया भी जेड़े कुछ सिंह नौकरी करते सी मिल वर्तनीय सी जेड़े कृपाना फड़ के कोई जंग युद्ध नहीं सी करन वाले कदे किते भी हमला नहीं सी कीता कदे अगे होके इन्हां दे नाल लड़े नहीं सी क्योंकि सरकारी दरबारे नौकरी भी करते सी कोई जहलकार सी बस जिन्हां दे साबत सूरत चेहरे देखे ते जिन्हां दे नाम नाल सिंह लगदा सी
0: किन्ने चुड़न के आगे कहो पहलो इस मात
1: कहिंदे सब तो पहला काम यह किया भी उह जिन्ने मुलाजम जिन्हां दे नाम नाल सिंह लगदा सी ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ
0: ਚੁਪਈ ਜਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋ ਸੁਣ ਪਾਈ
1: ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਏ

पूजा इसलिए करनी है साईं नूं रजा सका। पूजा एक ऐसा समर्पण है जिस विच मैं मेरी अते दुबधा नहीं हुंदी। फिर पुजारी दा निश्चा बनदा है तो सब कुछ मैनूं सौंपिया जां तेरा बंदा खोएगा। ए भी निश्चा बनेगा कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, मैं तेरा तू हमारा। फिर तां पूजा ऐसी होवे कंप्लीट समर्पण कर जाइए। तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मनिया पाईए असर विच पूजा जी। ते सवाल करन वाले हुण सवाल करदे ने जिस परमेश्वर दी असी पूजा करनी है कि उसकी होण ते सानू विश्वास है कि नहीं, जिस संसार ने रहना नहीं उस ते असी श्रद्धा बनाई बैठे हां, जेड़ा निरंकार मुड्डो है हुण भी है सदीवी रहेगा उस ते शक करी बैठे हां पता नहीं है भी नहीं। सब नो पहला जे रब दे राह ते तुरना विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, है तू होवनहार अगम अगाध ऊच पार, तेरे तो बिना दूसरा कोई भी नहीं, प्रतीत तो बिना नहीं जे पूजा रंभ होनी। ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, जाके मन गुर की प्रतीत तिस जाने आवे हर प्रभ चीत। रब उदो चेता आएगा जो गुरु नू रब वर्गा समझांगे, गुरु ते विश्वास होएगा। तत् ज्ञान उदो प्रगट हुंदा सिख दे अंदर जो विश्वास आ जाए। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया खो वाहिगुरु। तन गुरु ग्रंथ साहिब नू मत्था टेकन लगे हैं, रब समझ के मत्था टेकी ये रब है। तन गुरु गोबिंद सिंह ने आप मत्था टेके इन्हां दे चरणां ते, जे विश्वास नहीं इत्थों कुछ नहीं मिलेगा। सिद्ध कर सिजदा मन कर मकसूद, जय तेर देखा ते तेर मौजूद। वो हाजिर हो जाएगा जदों प्रतख समते ने, वो हाजिर नाजर है। सद हजूर हाजिर है नाजर, कतह ना पाए उधराई किथे गया। दूसरा सवाल पैदा हुंदा जिस दी असी मालक दी पूजा करनी है वो रहिंदा किथे है। जदों तक ये ज्ञान नहीं होएगा नहीं आरंभ होनी पूजा। कट कट मैं हरजूब सह संतन कहे ओ पुकार खोवे, संतां ने उच्ची उच्ची पुकार के कहा रब सारिया के हिरदिया च वसदा सारिया ने दिलां। फिर कट अंतर पूजा होए उस दिन पूजा आरंभ होएगी। फिर तां तन मन अर्पो पूर चढ़ावो गुर प्रसाद निरंजन पा, अपना आप पेटा कर दईए और संसार दिते हुए पदार्थ मालक दे चरणां च पेटा कर दे। पेटा अपने आप नूं करना सी, असी पेटा करन नूं तैयार नहीं है। अमृत छकना की है। 4 तरीक नूं सवेरे 7 बजे उपरली गैली च अमृत संचार होने ने, ते अमृत संचार दा इको ही कम हुंदा है सिख ने अपना मन समर्पण करना है, मन बेचना हुंदा गुरु। जदों मन दे दिता फिर गुरु ने तुहानू रंग के वापस करना। जे मन बेचा सतगुर के पास तिस सेवक के कार्ज रास, मन दे राम लिया है मोर, सिखी मिलेगी मन दे के ते असी मन बचा लैने हां, अपनी मत नहीं छड़दे। गोलक दे भी तन पा दिता तन पेटा हो गया, सेवा कीती तन भी पेटा हो गया, तन भी ते मन भेटा करना सी, मन गुरु नूं देना सी, अपनी मत छड़नी सी, गुरु दी मत लैनी सी, असी उह देण नूं तैयार नहीं। इसे करके 50-50 साल हो गए असी अमृत छकण नूं तैयार नहीं। कदा डर लगता सानू जे तन गुरु गोबिंद सिंह महाराज चोली अट के पंजा अगे आप कह रहे ने मैनू भी दाज चाहिए। उन्हां तों वड्डा पीर पैगंबर औलिया सियाणा इस कायनात च ना कोई होया है ना कोई होएगा। इस करके भेटा करिए अपना आप। अज कह के तेरा नाम करी चरण आठिया, जे मन उरसा होए संसार चंदन दे विच केसर ला लिया। कहिंदे तेरा नाम रूपी चंदन मैं तन ते कसाया ताकि मैं सच्चा ते सुचा हो सकां कोवे। करनी कुंगू जेर लै काटे अंतर पूजा होए, उच्चा चरण बनाउणा पएगा, उच्चा करैक्टर रखना पएगा, यह होएगा केसर। जे उच्चा ककार नहीं जिन्ने मर्जी बारमुखी पदार्थ तुसी इकट्ठे कर लो कोई फायदा नहीं। केसर बनेगा उच्चा आचार करैक्टर, उस दिन पूजा आरंभ होएगी। बारों
ਤਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਧੋਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੀ। ਜੇ ਮਨ ਧੋਵੇ ਕੋਏ ਤੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨਾਈਐ ਪਾਈ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਝੂਠ ਲਹਿ ਜਿਉ ਮਾਂਜੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਪਿਆਣਾ ਹੋਏ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਾਂਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿਮਣ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਆ ਕਾ ਪੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਕਿਤਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਫਿਟਕਾਰ ਜੇ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜੇ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇਰਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਫਿਟਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਚ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਗ ਕਾਪੜੇ ਅੰਗ ਚੜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਲ, ਤੇਰਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੰਦਨ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚੜਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ।

गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले किती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

सारे जग बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नानकियो तन सारा सो को टल गुरु सेवी एनस सहज सुभा दर्शन प्रसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन प्रसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

0: हो अपना गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात गुण नानक चाहे हो नानक चाहे हो नानक
1: निहाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी मानु पावे मन पावे बोले श्री गुरु गोविंद सिंह जी मन पावे गाज गाज करे जावे ना रो जावे तन तन बाबा दीप सिंह ते मनु पावे
0: देख तेग पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे
1: बोले सोनार
0: श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख न लगे आए। जम्मण मरना मिट गया, काले का किछ ना बसाए। अंग

कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देदा देला दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राहु, नानक विगसै वे प्रवाहु। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाउ अपार, आख्यह मंगह देह देह, दात करे दातार, फेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए।

सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत तवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगा

का गुरु एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करण नाही सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होवे सचियार तबले ऊपर कीता पहार धरती होर परे होर होर तिस्ते पहार तले कवन जोर जी अजात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम।

सोदर कीहा सोकर कीहा जित बह सर्व संभाली। वाजी नाद अनेक संखा किते वावण हारी, किते राग परिस कहियन किते गावण हारी। गावे तोहण पौण पाणी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरी। गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारी। गावे ईश्वर वर्मा देवी।

जति सती संतोखी गावे वीर करारी। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले। गावन रतन उपाय तेरी अड़सठ तीर्थ नाली।

मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम अर भर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुन घन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तृत तृत तर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार याद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जना बात अनझंझ गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वे प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विशंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है जपा जाप है थपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खल कहायक है विशुंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पवपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र।

नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूति कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसवासे नमो बांक भंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी शांद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपिहेख

लिखी भुजंग प्रयात छंद। नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल नामे समस्तल निवासी नृकामंग विभूति समस्तल स्वरूपी कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूति सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करिमल रहीमे जत्र चक्रवर्ती जत्र चक्र भुगते स्वयं पव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते।

जीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने।

भयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अवरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुझ तब सरणी परी तिनके दुष्ट दुखत हवै मरी पुरख जवन बग परे तिहारी तिनके

मन हो विसारिये, जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करते खीलर चाया, जात सपाणा ता जम्या परवार पला पाया, लिव शुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया, एह माया जित हर विसरै मुंह उपजै पाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जना लिव लागी तिनी विचे।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया

तिते अवगण हमारे दया करहो किस मेहर उपाव हो डुबदे पत्थर तारे सुकह टल गुर सेविया सहज सुभाई दर्शन पर।

जियो पिंड सब किसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड है चंगा अपना कर पुननी सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करे दी आइए हो रहे न परिये पाइए हो रहे न परिये।

सेव किति संतोखी जी सत्सत्याया होनी मंदै पैना रुखे का सुखी तमकमाया होनी दुनिया तोड़े बंदा पानी थोड़ा खाया तू बख्शी अगला नि

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही।

0: सुन के गल सिख दी दर्शन करने
1: सतगुर दे
0: सुन के गल सिख दी दर्शन करने
1: सतगुर दे
0: बाबे आदमी अपने मन विच गल
1: विचारी
0: बाबे आदमी अपने मन विच
1: गल विचारी
0: छेती छेती आया मुड़के अपने घर नू सी मैं सदके

तू दाता दाता तेरा दिता खावना सतगुर ने बेअंत दाता दे के निवाजा है। कोई शुक्र करता है उन्हूं तो मालिक दिंदा है, जो कोई नहीं भी करता वो दाता ऐसा है उसनों भी बख्शा करता है, उन्हूं भी निरंतर ही जो लोड़ है सतगुरु पूरी करता है, एक सार सब दी उपर प्रतिपालना करता है। सतगुरु रहमत करे जिथे आप सुरत संगतां गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे हो, सरबत दी हाजरी दर प्रवान करन, शुभ भावनावां पूरियां करन, दरों करों गुरसिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शिश करन। सो सतगुरु जी ने रहमत कीती है जो समां बनाया है, सारे ही रागी सिंह मेरे छोटे वीर ने भाई रविंदर सिंह बहुत समा से कठिया ने दरबार साहब कीर्तन किया है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर श्री केसगढ़ साहब तो 2003 तो असी अपनी सेवा आरंभ की 2006 तो हरिमंदर साहब अज सारे ही वीर इतने मिले ने, और जिथे धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोटानकोट शुकराना है उत्थे समूह प्रबंधक कमेटी जी दस बड़ी बार इस गुरु घर आया है, दो दो चार चार महीने कीर्तन करने के लिए आप बेअंत संगत बैठे हो, पुराने सज्जन भी सारे संगत के सतगुरु चढ़ती कला बख्शिश कर। इतने समूह प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग अंकल जी सरदार रणजीत सिंह जी जो बतौर हैड ग्रंथी गुरु घर विखे सेवा निभा रहे हैं, जिन्हें सदा ही बड़ा माण बख्शिश किया, उन्होंने धन्यवाद हुक्म होया से उन्होंने वालों कि आप संगत के दर्शन करिए, हुई भुला चुकों की खीमा सुआओ। पौड़ी का गायन करके उपरंत समाप्ति है, अगला प्रोग्राम जी प्यार।

सुत बनिता कोय न किस की धरिया सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाओ करिया ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह है सब त्यावह है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावहो संत हो जी सब दुख विसारन हारा हर

गुण आख बखाना। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जाम की फासी। जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनंता। तेरी अनेक कर है हर पूजा जी। तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरित सासत जी। कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई।

सब सह का जानोई आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो ताओ भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हाव पाई रहाओ।

जाओ पई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कार दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा।

हमारे तारिया है, चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है। आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रच्छा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे।

शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह धार सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताकाओ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखाना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रान काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे बुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास्ते ताहि उबारा

आए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला तीजा